0: रहता है 15 दिन से ज़्यादा, मुकम्मल तादाद 5 दिन पहले, यानी फिर दोबारा जो है, जब दोबारा खून आया 2 दिन के बाद, वो 10 दिन से ज़्यादा चला गया, यानी टोटल जो खून के दिन है वो 15 दिन से ज़्यादा हैं, फिर तो जो 5 दिन जो है हैज़ के समझे जाएंगे, और बाकी के दिन पाकिजगी के बाद अगर 15 दिन से ज़्यादा हैं, गौर करें ज़रा मेरी बात पर, अगर 15 दिन से मुकम्मल तादाद खून की जो हैज़ की 15 दिन से ज़्यादा हो जाती है, तो जो 15 दिन से ज़्यादा हैं जो है वो हैज़ नहीं होता, इस्तिहावा होता है, जिसे दम फसाद भी कहते हैं, इसका हैज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस हालत में 5 दिन जो पहले थे वो, या 6 दिन जो पहले थे, ये हैज़ का खून होगा, और बाकी जो पाकिजगी के 2 दिनों के बाद जो खून था वो इस्तिहादा का होगा, उसकी कज़ा भी लाजमी नहीं है। लेकिन अगर वो 2-4 दिन रहा, यानी मुकम्मल जो है 10 दिन से मुकम्मल 15 दिन से कम रहा, यानी 6 दिन पहले और 2 दिन पाकिजगी के और फिर 4 दिन बाद जारी रहा, तो मुकम्मल 6 और 4 10 दिन होते हैं, तो ये 4 दिन जो पाकिजगी के 2 दिनों के बाद जो खून जारी हुआ, ये हैज़ का खून है, और फिर पाक होने के बाद रोज़े की भी कज़ा करेंगी, और जो है जो पहले 6 दिन थे वो, और 4 दिन ही, तो 10 दिन के रोज़े कज़ा करने पड़ेंगे। हैज़ औरत की नमाज की कज़ा जायज़ नहीं है, सिर्फ जो रोज़े हैं उनकी कज़ा होती है। मेरा ख्याल है मामला आसान है, आप टोटल तादाद दिन देख लें, अगर खून जारी होने के 15 दिन से ज़्यादा हैं, तो जो असल आदत थी 6 दिन की, वो हैज़ होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा दिन है वो इस्तिहादा होगा, उसका हुक्म हैज़ का नहीं है, यानी रोज़े कज़ा नहीं करने पड़ेंगे पाकिजगी 2 दिन पाकिजगी के बाद के, 2 दिन यह भी नहीं जो पाकिजगी के हैं, और बाद के दिन भी नहीं जो जिसमें खून जारी हुआ, और अगर टोटल तादाद दिनों के 15 दिन से कम है, तो फिर 2 दिन पाकिजगी के अलावा बाकी जो खून।
1: अगला सवाल है, रोज़े रखने की पड़ेंगे एक ख़ास दुआ, वो बस गदन आखिर दुआ बहुत मशहूर है, ये दुआ कहाँ तक दुरुस्त है? ये दुआ जो है ज़ईफ हदीस में आई है, सही हदीस नहीं है, और ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, ये सुन्नत साबित नहीं है। इसके बरक्स दूसरी दुआ जो अल्लाह बन हसन फरमाते हैं, ज़हब अज़्ज़मा उबतलत अल-उक़ुब तब तर इंशाअल्लाह, ये रिवायत सही है, अगर कोई पढ़ना चाहे, लेकिन ये इब्तिदा में नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या हम बता रहे हैं, क्या खबर दे रहे हैं, हाँ ज़हब अज़्ज़मा प्यास चली गई, तलत अल-उक़ुब रगत तर हो गई, तब तर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज्र साबित हो गया। तो ये खाने से पहले खाने के बाद होता है, तो हम बाज़ शुरू में कह देते हैं, कहते हदीस है तो इस पर अमल करते हैं, गलत है ये, जब आप इफ्तारी कर लें फिर आप कहें। हाँ सौम गदन है, रोज़ा रखते वक्त इफ्तारी की थी, ये भी सही नहीं है, रोज़ा रोज़ा रखने वक्त की जो है वो दूसरी कौन सी जो, उसको मैं कह रहा हूँ अल्लाह कसम तो हो गए अफ्तर तो, हाँ हाँ ये ज़ईफ़ है, ये ज़ईफ़ है दूसरे से, लेकिन भाई के सवाल है कि रोज़ा रखने की यानी सहरी के वक्त जो दुआ मांगी जाती है, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है, ये हदीस सुन्नत से साबित नहीं है। वो भी सौमी गदन, अच्छा इस पर ज़रा अल्फाज हुए, वो भी सौमी गदन, रोज़ा आज रख रहे हैं आप, नीयत कल की कर रहे हैं।
2: सवाल है कि एक शख्स ने 1 करोड़ खरीदा है, दूसरे शख्स ने 1 करोड़ का प्लाट खरीदा है, दोनों बिजनेस करना चाहते हैं, क्या दोनों पर ज़कात फ़र्ज़ है? शायद भाई को ये बात मुश्किल पड़ गई कि मैंने कहा प्लाट जब तक बरए फ़रोख्त ना लिखे उस वक्त ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो जाती, और ये मैंने कहा एक मुगालता है, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि पहले दिन से ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और फिर कयास करते हैं गोल्ड पर और बाकी चीज़ों पर, जिसने गोल्ड ख़रीदा है उस पर ज़कात गोल्ड की अलग से ज़कात है, यानी ज़कात देकर निसाब से ज़ाहिर उसे 1 करोड़ का गोल्ड खरीदा, तो उस पर आज नहीं 1 साल के बाद उस करोड़ में से कितना बचा है उस पर ज़कात है, पतली करोड़ से 2 करोड़ हो जाए क्या पता, डेढ़ भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो जो बचा है उस पर ज़कात है, सिर्फ फिगर पे नहीं है, ठीक है। जिसे प्लाट ख़रीदा है उसका प्लाट 1 करोड़ का था, हो सकता है अब अगले साल 1.5 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, अगर उसने बराए फरोख्त का बोर्ड नहीं लगाया उस पर ज़कात नहीं है, अगर उसने लगा दिया है 1 साल गुजर गया है प्लाट बेचा है ज़कात फ़र्ज़ हो गई है उस वक्त।
1: दूसरा सवाल है,
2: अल्लाह
1: रमज़ान शरीफ होने वाला है और मैं इस साल रोज़े रखने की हालत में नहीं हूँ, मेरा बेटा अभी 5 मंथ्स में चल रहा है, वो फीडिंग करता है जैसे लिखा वैसे पढ़ रहा हूँ मैं, ये भी रोमन में लिखा है इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ रहा हूँ मैं, वो फीडिंग करता है तो मुझे बार बार भूख लगती है, तो मैं क्या किसी गरीब